0: അച്ഛനൊപ്പം നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം.
1: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है.